की तन्हाई में टूट सा गया हूं। मेरे आंसू तेरे सामने गिर रहे हैं, मेरी खामोशी भी तू सुन रहा है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हबीब के सदके मुझे भी पनाह दे।

आंखों से अपने ही वजूद से मैं भागता रहा मगर तू हर जगह था। आज तेरे दर पे खड़ा हूं खाली हाथ मगर टूटा हुआ दिल लेकर।

पर तू तो अल-मुइज़ है, तू अपने बंदों को इज्जत देने वाला है। इंसान की बनाई हुई दुनिया से थक गया हूं मैं, मुझे अपने दमाने रहमत में छुपा ले, मेरी लाज रख ले मौला।

हर मोहब्बत का एक मतलब है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसकी मोहब्बत लामहदूद और बेमतलब है। वो जात है मां, और उसके लबों से निकली हुई फरियाद उसकी दुआ, वो दुआ जो फरिश्तों के परों पर लिखकर सीधा अर्श इलाही तक जाती है, वो दुआ जिसे रब कभी रद्द नहीं।

बेशक हर हिला दे और फर्श भी हिला दे. मैं शब्बीर जेकब साहब को ये गाने की मतलब समझा रही तो हम दोनों के आंख में आंसू आ गए. ये अजमत ही वैसी है जो अल्लाह ने हर एक को नवाजा है. और मैं ये कहूँगी वो बदनसीब होते हैं जिनको माँ बाप का प्यार मुयस्सर नहीं होता. मैसेज आया है हमारी प्यारी रशीदा आपा की तरफ से, जो कहती हैं, सलाम सुफिया भना, मैसेज टू माई सिस्टर एंड मदर. A woman with so much wisdom, love and care. Not a visit goes by without her asking me about the kids and if I'm okay, and followed by a precious, beautiful dua for our well-being. A mother is the only woman who understands you without words or a language. She's my strength and the sunshine of my soul. Shukar to Bhaimiya and Zaibun for taking care of our Jannah. May Allah grant my mother many more years with good health, inshallah. Beshak, Rashida Appa, main sehmat hoon aapse. Maa ki जो कदर होती है, जो अपने बच्चों के लिए फिक्र होती है, वो किसी और को नहीं होती है. तो ये अगला कलाम भी माँ की दुआ आपके लिए.

बेशक, और काफी हमारे सुनने वाले कह रहे हैं कि उनकी आंख में आंसू आ गया है, और मैसेज आया है हमारी प्यारी बीबी चीची की तरफ से, जो कहती है मुबारक टू ऑल मॉम्स मदर्स डेज एवरी डे, ब्यूटीफुल सिलेक्शन, एंजॉयिंग इट, जज़ाकअल्लाह खैर, सेफ होम, जज़ाकअल्लाह खैर, मैं आपके दुआओं की तलबगार हूँ, मेरे लिए दुआ करते रहे बस. अगला कलाम भी एक नात, एक नज़म है माँ के ऊपर.

बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत कलाम और ये काफ़ी लोगों ने इंजॉय किया। मोहम्मद आलम साहब इलाही कह रहे हैं कि ये गाना मैं उनके वालिदा के लिए डेडिकेट करूँ, एंड ही सेज दैट हिज मदर इंस्पायर्स हिम विद अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, एंड ही सेज ही सेलिब्रेट्स मदर्स डे एवरी डे। बेशक इलाही साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और कहती रहूँगी कि माँ बाप के लिए हर दिन होना चाहिए, ना कि साल में एक बार हम उनके लिए फूल ले जाएं या उन्हें बाहर ले जाएं, हर एक दिन उनके लिए वक्त निकालें, उनको प्यार दें, उन्हें वक्त दें। और ये और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्थडे मैसेज है हमारी प्यारी सी छोटी सी अनीसा सोलकर के लिए, जिनकी कल सालगिरह थी। अनीसा, स्टे द अमेजिंग पर्सन यू आर। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमेशा आपके बच्चों पर रखे और आपके अक्सा और इस्माइल ये दोनों बच्चे के ऊपर आपका साया रहे। आपको सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे और स्टे द अमेजिंग लविंग स्वीट पर्सन यू आर। तो अगला कलाम भी हमने लिया है माँ के ऊपर और ये हम डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद आलम साहब की तरफ से अपनी अम्मी हलीमा इलाही के लिए और मोहम्मद रज़ा साहब की तरफ से उनकी वालिदा सकीना के लिए और रशीदा मोज़र की तरफ से भी उनकी वालिदा के लिए और रिहाना फिरफिरे की तरफ से भी उनकी वालिदा के लिए।

जी हाँ, चढ़ता सूरज ढल जाएगा और हमें जाना ही है इस दुनिया से, पता नहीं कब। अभी रात के तकरीबन 9:45 होने आए हैं और प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टेक्नीशियन जो बहुत मेहनत करते हैं, एंड ही इज फैंटास्टिक इन व्हाट ही डज, शपीर जेकब साहब, और वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो दुआ करें ये घर खैरियत से पहुँचे। और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई काबिले तारीफ है। दुआ करते रहें हमारे लिए कि हम ये प्रोग्राम करते रहें और आपको पसंद आता रहे। इंशाल्लाह अगर इसके बाद आप सुनेंगे एक और गज़ल सेगमेंट में हमारी एक गज़ल, दर्द तुम ना समझोगे, और फिर हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में होगा वाकया हज़रत अली का, और फिर मदीने जाने वालों इस्माइल ताज साहब की आवाज़ में, और फिर सलामी या नबी सलाम अलैकुम। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

सुना है जब कोई रोकर सलाम पढ़ता है तो खुद सरकारे दो आलम उसे जवाब देते हैं, और जब मदीने की गलियों में कोई या नबी पुकारता है तो हवाएं भी ठहर कर उसका सलाम चूमती हैं।